कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहर ना पौजल फेरा। परिवार वालों माता जगदीश कौर बेदी जी, जो कि पिछले दिन उस अकाल पुरख के चरण में जावरा जी, उन्हों की अंतिम अरदास मुख रखद्या होया परिवार ने सतगुरु ने चरण परसे। आप जी ने भी अरदास करनी, सतगुर कृपा कर विछड़ी रूह माता जगदीश कौर बेदी जी सदीवी कल अपने चरणा कमलों में निवास बख्शिश कर, पिछे परिवार को भाणा मनण का बल बख्शिश कर। आओ रल के हुण अनसर बने जाप करिए। जिनी भी संगत है, सारी संगत अपनी हाजिरी लो जी। कोई भी रसनावा जी ना रहे जी।

कल्याण कर व्यापे मेले सा शामिल करो नाद गुण गाव पर परमानंद। राम नाम तत करो विचार दो लब देखा करो उदार मत बचना के गुण गाओ प्रांतन कह स्वाओ। आठ पैर पर पेखो निरा मिटे ज्ञान मिन से अंधेरा सुन बदे सिर देव साव मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पत दिले हो सवा राम नाम त्रोता पूरे गुर की पूरी दिखा जिस मन बसा ते सच परिख्या मानता नाम बोले मिलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी दर गहर बह के तुम्हारी कटे कर को मनवाए नानक बोन है वह जाए। तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरा रखना त्याय पो जब सकल मिटा पर पते प्राणी छूटा जिस पर रखा तिसे ना ही दुख ना जब मन हो वह सुख। चिंता जाए मिटे अंका ते जन को कोई ना पहुंचन हार से रूपर ठंडा कर सूरा नानक ताके काज पूरा मत पूरी। अमृत जाके दृष्ट दर्शन पे खरूद श्रेष्ठ चन कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा से प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन वसै सो हो तनिहाल ता कह निकट ने आपत काल अमर भय अमरा पद पाया सा संग नानक हर ध्याया श्लोक। ज्ञान अंजन गुरु दियाँ ज्ञान देर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी। संत संग अंत प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट मायन करंग नाना दिष्टाए। नौ निधय अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। सुन समाध अंत नाद कहना जाई अचल स्मित माध तिन देखा जिस आप दिखाए नानक ते जनिया सोजी पाए। सुअंत सोबार अंत घट घट व्यापरिया भगवंत तन माया काश प्या सब लोग पुन प्रतपाल बंत इन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी अगे तैसा कर्म। फुण पाणी बैसंतर वाय चार गुड़ दिस समाज दिस पे नहीं को ठाओ गुर पर सा नान सुख पाओ वेद प्राण सिमत मैं देख सच सुन खतर मैं एक बाणी।

तिरांत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा। सब ध्यावै है सब ध्यावै तुजी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया कादा तारा। हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी। तिन तूटी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी। तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी। जन नानक

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा, पोपन भ्रष्ट गगन ते पई, सब हिन आन बधाई दई। धान्य धान्य लोगन के राजा, दुष्टन दाहा गरीब निवाजा, अखल भवन के सृजन हारे, दास जान मोह लेहो बारे, कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सुबह तुम काव हो, आप हाथ दै मोह बचाव हो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सेख्य सबै करतारा, मोर अच्छा निंद कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै, पूर्ण होए हमारी आशा, थोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारियै, चुन चुन सत्र हमारे मारिये है, आप हाथ दे मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जीव करियो रक्षा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन मंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षनि उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह मद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जावुद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला, सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई, संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ

नमस्तं करतार नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे जा श्री शांत त्वे प्रसाद रूप है।

0: अकंज है पंज है चूज है चंज है त्रिभुज है सूज है अकाल है जाल है अलीक है नृसिक है निर्लंब है संभ
1: है
0: अलोक है अशोक

0: बालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल नाम धाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग नाम काम बहीन पेख ताम हूँ नह जाहे एक मूर्तन एक दर्शन कीन रूप अनेक ना जान ही जय वेद और कतेब आत्मा न जात जाकर जन्म मन विहीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय
1: जाप
0: परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश संग्राग न रंग जा कह जात पात ना नाम आप रूपम एक अनुस्तत एक पुरख तूत अंगहीन पंगनातम एक पुरख पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक।

0: भूत करने
1: के राजंग प्रभाए के तरमंग तुझा है
0: अशोक बनने के सर्वाय बनने
1: के जगत कृति है के शतरंग क्षत्रिय
0: है के अनुपो अनुप
1: के आद देव है के आप पे
0: चित्रंग महीने के दिन
1: के रोजी रजा के रही मेरे हक के बाद के अफल गुना है के चाहन शाह है
0: कारण को निंदा है के रोगी दिहंद है
1: के राज करही मैं के कर्मंग करी मैं
0: के सर्वंगली है के सर्वंगली है
1: के सर्वत्र माने सदैव अंग प्रदान
0: के सर्वत्र माने के सर्वत्र दान
1: के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
0: के सर्वत्र देश है
1: के सर्वत्र पेश
0: है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन
0: है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
2: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज
2: है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
2: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र मान्य सदैव अंग प्रदान
2: के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य
1: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान
2: है के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कलि में के परमंग फहिम
2: के अकलाला में के साहिब कला में
1: के हुस्नल वजु है तमाम दरजु
3: है हमें सुसला में सलीक मुदा में
1: गनी मुलसिक से गरीब उल परस्ते
3: बुलंदन मकाने जमीन उल जमाने
1: समी जुल तमाम मेरे जुअल निदान
3: हरिफुल अजीम में ने

0: कर्ता सर्वं कर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावलशं स्वप्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं पेतुते
0: परमात्मं परमाते सदा सर्वसत्य
1: अगाच रूपे निपात पेतुते
0: अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिका में
1: नरपंगी स्वरूपे सर्पंगी अनुपे
0: न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्र
1: न दाते न माते न जाते न पाते
0: श्री के अमितो मिके
1: सदैवं प्रभा है जय है भगवती शंत्र प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है
2: हमें सुल सलाम है समस्त कलाम है
1: के साहेब दिमाग है के हुस्नल चराग है
2: कामल करीम है के राजक रहीम है
1: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
2: गरीबुल कमाल है के हुस्नल जमाल है
1: गलीमुल खेराज है गरीबुल निवास है
2: हरीफुल शिकन है राजुल फिकन है
1: कलंकन परनास है समस्तुल निवास है समस्तुल जुबा है कि साहेब किरा है के सरबुल गवान है क्या मेसुल रवान है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है के अचलन प्रकाश है क्या मितो सुबास
2: है
1: अमितो पसा है के आत्म प्रभा है मधुपर छंत प्रसाद मुनमन पर नाम गुन गन मुदाम अन गन पर नाम मुन मन सलाम अन पव अनास मुन मन
2: प्रकाश
1: अंग आसन अपांग
2: जल
1: थल अमंड दिस अपांड अन पव अनास तर तुरा ओंकार आद कथनी अनाद कर कर पर नाम चित चरण नाम अंजज गात अन रंज बात आडीट तरम अत डीट करम हर बोल मना छंत पर सा कर नाले है अर काले है

संबर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कालखंडस है, अजपा जप है, थप्पा थप है, अमृता अमृत है, करुणाकृत है, अमितेश्वर है, पर

0: एक अछरी छंद अजय अलय अबे अबे
1: अबू अजू अनास कास
0: अगंज अपंज अलख अपख
1: अकाल दे आले लेख अपेख
0: अनाम अकाम का अडा
1: अनाथे परमाते अजो नियमोनी
0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्म अपर्म अगंज अलेखे
0: भुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अगंजल नामे समस्तुल निवासे
0: निकामन पेपूते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्म परनासी सुतर्मम पभूते
0: सदा सचदानंद सत्रन परनासी
1: करीमल को निंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय पेपूते गजाय गनी में
1: करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन करियन

0: फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गुजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपति भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सितारे
0: तीर्थ नाम दया दम दाम सुसंजम नेम नेक बिसेख है
1: वेद पुराण कते पुराण जमी जबान के पिख है
0: पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार क देख है
1: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है
0: शुद्ध सिपाह दुरंत दुबासु साज सुनाह दुर्जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंगा ले नहलेंगे
0: तोर रीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरियार अवचार सार की तार पछैया
1: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
0: काड़े गड़ान को तोड़न हार सुबातन ही चक चाल वैया
1: साहिब श्री सबको नायक चाचक अनेक सो एक दिवैया
0: दानव देव निंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे
1: जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: पुन्न प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
1: सास मुपसन फिरे जग सतर सबे अवलोक चपेंगे
0: मानव इंद्र गजिंदर नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साज बेरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे न श्रीपत के प्रसे पग ते नर फेल न दे तरेंगे
0: कहां पयो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो
1: नाथ प्रियो लिए सात समुंदर लोग के ऊपर लोग गवायो
0: पास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो
1: साच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहुल पाहन पूज तरयो सिर काहुल लिंग गरे लटकायो
1: काहुल

0: ताकु कृपाहन अनमार्थ माँ मूड कछ पे ना जान
1: महादेव को कह सदाचिव निरंकार का चिंतन पे वो
0: आप अपनी बुध है जेती परनत पिन पिन तो तेती
1: तुमरा नखा ना जाए पसारा के भी सजा प्रथम संसारा
0: एक है रूप अनूप स्वरूपा रंग पे और आफ गई पूपा
1: अन्ना तेरे से तजकीनी उत्पल खार बहुरक दिनी
0: को फूल राजा हुए बैठा को सिमट पर संकेत

0: कर्मी सहज न उपजे मन सहज सहसा न जाए
1: संजम रहे कर्म कमाए
0: सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सह

0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिय
1: मनो क्यों विसारिय एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे
0: ओसनु कोई पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिय
0: कह नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारिय
1: जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया
0: माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया
1: जहाँ तिस पाणा ता जमया परवार पला पाया
0: लिव चुड़की लगी तिसना माया अमर वरताया
1: ए माया जित हर विसरे मोप जय पाओ दूजा लाया
0: कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने तिनी विचे माया पाया
1: हर आप मूलक है मूल न पाया जाए
0: मूल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोक विलाए
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौपिए विचो आप जाए
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए
1: हर आप मूलक है भाग ना के नानका जिन हर पल्ले पाए
2: हर रास मेरी मन वंजारा हर रास मेरी मन वंजारा सतगुर ते रास जानी
1: हर हर नित जपयो जियो लाहा खटयो दिहाड़ी
2: एव तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा
1: कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवन जारा
2: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए
1: प्यास न जाए होरत कित जिचर हर रस पल्ले न पाए
2: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न तृष्णा लागे आए
1: एव अनरस करमी पाई है सतगुर मिले जिस आए
2: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जाहर वसे मनाए
1: ए शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया
2: हर जोत रखी तुद विच

0: कह नानक प्रभ आप मेरे करण कारण जोगो
1: ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया
0: के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
1: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया
0: गुर प्रसादी हर मन वसया।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है घर नौन दयावै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसा